0: फिको फिका सदिया फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिया मुथुका फिके पाए फिका मूर्ख आखिया पाना ले सजाए महला पहला।
1: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल हथ सठ तीरथ जे नावे उतरै नाही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसै रंग रोवै।

0: एक नहीं दात आपस ते जो पाए नानक साकरमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
1: एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम न जाए नानक

जब लग टुटे नाही मन परमा, तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई। जब लग टुटे नाही मन परमा,

संत भगत जन सोई, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा, जतन करै मानुख डहकावै, ओहो अंतर जामी जानै, पाप करे कर मुकर पावै, भेख करै निर्वाणै।

बंदी अंदर विरले बंदे बंदी अंदर विरले बंदे जोध के जतैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मटैया नाथ तीन लोग गाइए काहू के तनैया है न मैया जा को पहिया को छौनियों के छैया छोड़ का सुप्रीत लाइए साधना से दैया तुल तान के तो जैया तुम तार के तरैया ध्यान ताकू

रब हे सस हे करुणानिधि मेरी अब बिनती सुन ली और न मांगत हो तुम ते कच्चा तो चित मैं सोई थी वस्त्र सो अत हिरण पी जूझ मरो तो साच पति संत सहाय सदा जगम कृपा कर श्याम है बर जी कृपा कर श्याम है बर जी कृपा कर श्याम है बर जी जय सतगुरु की।

0: गए मसकत कहा, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना।
1: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

हित चित कर बहुविध शिला बुझाई, प्राण थके ओ पाहन कह परसत कछु कर सिद्ध नाय। प्राण थके ओ पाहन कह परसत कछु

ज्योति जोत मिलाए कायागढ़ सोयारा कायागढ़ सोया मेरे प्रभुया। क्यों सास की रास विसारी है अदृष्ट अगोचर।

नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पौड़ी वटी वडे अपार तेरा मर्तबा, रंग परांगा ने एक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सबके जान ला, सब किश तेरे बस तेरा करफला, तेरे घर आनंद वधाई तुद घर, माण महता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दे सहजत कथा, नानक दा सुंदा।

0: तख्त सिर सहा पाथ सह नह चौर छत
1: पौड़ी वड्डी होवे डा पार तेरा मर्तबा रंग।

माता तरत महत दिवस रात दुविधाई दया खेलै सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया।

दुष्ट दुख ते लेहो बचाई, खड़ग के तमें शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी, सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाई गहे जबते तुमरे, तबते को आँख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहुभेद कहें हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो, दोहरा सगल द्वार को शाड़क, कहियो तुहार द्वार, बाहीं गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार, सगल द्वार को शाड़क, गहो तुहार द्वार, बाही गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजियां वादाहियां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां, शब्दो ता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रह हर नाले, हर नाल रह तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार हो करे तेरा, कारज सब सवारना, सबना गल्लां समरत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे, सदा रह हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे, सदा सिवत सला तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनका मन वस्या, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरा, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वस्या, जनिशा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो, जिस दियाँ ही वड्याइया, कह नानक सुनो संत, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार,
ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣਹੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਰ,

अर्जन हर गोविंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाए। दसां पातशाहियां दी जोत

जग और न जाहे महातम में अवतार उजागर आन किया तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पिया यह पद्धत ते मत चुकह रे मन भेद विभेद न जान बिया प्रत्यक्ष हृदय गुर अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लिया तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार दे अनित न नित रहे जस नाव चढ़ पव सागर तारे धीरज धाम बनाए यह तन बुद्ध संदीपक ज्यों उजियारे ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले कातुरता कुतवार बुहारे ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले कातुरता कुतवार बुहारे सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी दूर अरसो कुरसो चट्टी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पर

जन के चरण वसह मेरही अर संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुख एही जन के चरण वसह मेरही अर संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुख एही।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख ओ सिफत।

ओंकार सतनाम करता पुरुख निरपहो निर्वैर काल मूर्त हजूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले की लिखे टुंडे असरा जय की तुनी श्लोक महला।

अपने आप साजो अपन रचो नाओ दुई कुदरत साजिए करे आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुझ देवे करे पसाओ तू जानो इस सबसे दिल ऐसे।

0: सगल्या भौ लिख्या सलेख, नानक निर्भव निरंकार सचेक महला पहला।
1: नानक निरंकार होके तेरा अमरवाल केतियां कन कहानियां के

0: चखना चाक महला पहला।
1: लिख लिख पड़िया ते ता करिया बहु तीर पवया ते तो लव्या बहु पे किया दही दुख दिया सहवे जिया अपना किया। अन्न न खाया साथ गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस।

संहार, कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरया करतार।

0: लख है इक इक कर वरनियो गुरु अमरदास जाल पने तू इक लोड़ है इक मनियो।
1: जे मत कही जय देव जे मत ना मैं सम्मानी जे मत त्रिलोचन चित भगत कंबीर है जानी रुक मांगद करतूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोबिंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सुमत जल जानी जुगत गुर अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुकत गुर अमरदास परसिया पहुं पातिक बिनासै गुर अमरदास परसिया सिद्ध साधिक आसासै गुर अमरदास परसिया ध्यान लहिया पौमकै गुर अमरदास परसिया अपौ लबै गो चुकै एक बिंदु गन जो तो रहै जास मंत्र मान वह लहै जाल पाप दारथ इतड़े गुर अमरदास दिठे मिले।
2: सच नाम करतार सोदड़े नानक संग रहे हो ताते अंगद लहना प्रगट तास चरने लिव रहे हो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कमन वखान हो जो गुण लख अगम तिन्हे गुण अंत न जानो बोथो बधाते निर्मयो सब संगत कुल उदरन गुर अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पा शरण।
3: जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखे सरन परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत पाए परपूर हृदय उचरै करतारै गुर गोहर दरियाओ

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथाह अत बड सो पर सदा सब बिदरत नागर संत मराल करे कंतु हल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल जुग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर हम अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत लग एक

0: बस राखो सरनाई।
1: सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह।

सब बिनसे दाल द दल घाव पौ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी हार अस्थिर सेव सुख समघा।

जा हिंद्रा से कित फल फिके फुल बक बके कम नाम है पत मिठ त्रिवि नानका गुण सिंगाइया तत सब कुन वे आपको पर कुन वे ना कोई धरत राजू तोलिए।

आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत। देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री